0: हेला नशाला हेला नशाला
1: दिवेही एफएम के खुम में गटी रेगे फैशन विस दिवेही अमिल्ला रागे के लावे कुम

0: दुआ को सारे गीतों को जैसा रो वादा नंत
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हम था अबदो एकु गवमा बाउ तो वे

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

सनम ओ जिगर तुम कहो क्या ही खबर कैसे कटी ये रातें हैं कहते हैं सब मगर